भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भगत रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देन वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत दे किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिस दे द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलियां पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

कहते हैं मैं परम गति पाले ही, सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस जहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई, बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करते हैं, इस दे नाल सहमत हैं, इस दे नाल इकमिक हैं, अते ताकीद करते हैं कि इंसान ए जिज्ञासु ए सीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी च आखते हैं कि जो साधुओं का संग है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है। कहते हैं यह जड़े कच्चे हैं इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है। कहते हैं तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे। साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इस नू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इस नू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू एक कचरा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नू फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नू असी देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं, उसी रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असी भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए, तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे, तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनु यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनु 10 साल पहला की करता हों, उसनु क्रेडिट दो, उसनु शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नु ही देखना है। बाणी दे विच एक साडी जो अवस्था है, साडी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उहदा कोई ना कोई अवगण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं ते तो भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिटे, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठ ही गई हाट्यो। वो कहिंदे जिहड़ी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठ ही गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसनु सुनो फिर उसका असी अर्थ करांगे।

तिनी खसम ते आयो इना जनता के बच के ना इत वेखी जगत पायो इकना नु तुमे ने काबू दिखवाया भूखी पाते जाने जिते तू।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रसना बांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जा भैणा नू ताल सुर दी समझ ना होए ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिहदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होएगी जे भैणा जा वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलना है।

Belki hissedilir. Guru Maharaj'ı longing present करते हैं, longing पेश करते हैं, एक प्यास, ज़रूरत, एक तड़प का जिक्र करते हैं, और आखते हैं मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसमें पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसमें बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसमें मिलना चाहता है, और उस अवस्था के मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है, दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है। भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती है। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन, मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनू मिलां। प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इसके विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ा हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दवें, अपने दीदार दे दवें, अपने आप नू मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते भाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड ना साइया ऐसाई, तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

अवरा खते लै भाड़ करे विवाह कड़का गल दसे राव सुन वेखो लोका लो वेडा।

तेरी कृपा मुहे करो। एक साखी है सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू ऐसे राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, ये तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ये ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो तेरे बख्शिया दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए। ऐसी मंग इस शब्द विच

बहुत प्रसिद्ध सरल पर गंभीर प्रकृति का राग है। यह राग लोक संगीत का इना अनिखड़वा अंग बन चुका है कनेका लोक गीतां विच इस दियां सुरां गूंजदियां सुनींदियां हन। टोडी बारे प्रसिद्ध है यह गा के गवैया राज दरबारां विच बख्शां दियां झोलियां भर लैंदा सी। गुरबाणी विच इको दे सलाहुण दा मजमून लिया है ताकि जीवड़ा दुनियावी दरां ते ना भटकदा फिरे। कोई एक ही किस्म दियां टोडियां सुनींदियां हन जिन्हां ने भी मनुखां दे दर जां लड़ पकड़े वह दुखी पर जिन्ना प्रभु दा पल्ला पकड़िया ओह बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ गंधार धैवत कोमल अते मध्यम तीबर लगदे हन। वादी सुर धैवत अते संवादी ऋषभ है। गायन समा है दिन दा दूजा पहर। इस राग विच पहला शब्द प्रस्तुत कर रहे हन भाई साहब बलबीर सिंह जी दा रागी जथा। रचना है गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। शब्द दी तुक है रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै गाली हर नेहु ना होए। दूजे शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई नरेंद्र सिंह जी अते साथी। शब्द दे बोल हन हर हर चरण हृदय उरधारै। ए रचना भी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी है। पहला शब्द सरवण करो।

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना भी किया है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्ह शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था को उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ, जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुआं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ, ताकि सानू कुछ ना कुछ ते चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ, अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश की है, हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज के कुछ एक प्रमाण आप जी के सामने रखन लगा हाँ, अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

इस दे विच भी गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उसे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वह हार तज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उस दे अंदर हौके हुंदे हन। तो उस दे अंदर की इंतजार हुंदी है, उडीनी यानी उड़ीक, उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री, कदों ओ प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नूं गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है। अते गुरु ग्रंथ साहिब च आप जी ने यह भी पंक्तियां सुनिया ही हैं कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। कहिंदे इंतजार तमन्ना इतनी वध गई है कि अगर कितने मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नूं खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उस नूं मैं लभ सकां तो कहिंदे मैं ये भी करन तैयार हां। हम भी कांदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन टोल। तो हुण तक मैं जितनियां भी मिसालां आप जी नूं दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच ये पेश किया है, ये आप जी के सामने रखिया है कि गुरु साहब एक खास किस्म की अवस्था, एक खास किस्म का ह्यूमन लाइफ के विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही भागशील लोगों ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उसनू साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जा आप जी के सामने मैं रखना चाहना हाँ

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। भाव उन्होंने कहन का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना। कहते हैं

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित करे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित करे अजिही चीज नहीं लगता जिड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन चीजों लगता रहना है जिड़िया ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज की सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नू कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच ओ इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया दे खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी ये सुनदिया सुनदिया अंदर ये देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असी अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हैं, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो।

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ते की बन गया ए पलां विच, सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ए हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा हुण विखा अपना बगीचा, ए राही दा हथ फड़ के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे आ फुल लगे सन। एक एक फुल दा ना लै लै के, बूटे दा ना लै लै के विखाउंदा, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटां विच। ऐ मनुख

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।